नाको हुआ नाको हुए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारह ते कमजात, नानक नावे बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत चित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जीव फरिया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिचक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊडावै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतोह जी सब दुख विसारण हारा।

हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता,

एक पढ़ै बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई,

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करु प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहि बचावहु सुखी बसै मोरू परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आसंगरिए।

पांव सुतुम ते पांव सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उवरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करे हो रक्षा राख लिहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे तीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर

जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद हर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताकाओ कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा

पुत पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पहु शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिखो बार असिख संगर हो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताकि ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट छाह छव सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैलिहु उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। खड़ग केत

सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुम्हारी कर, मैं न कहूँ सब तू हिब खा।

राम कली महला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला सुमरत स्वामी

कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु विट्टा हो जिस दिया ए वडियाइया। कह नानक सुनहु संत हो शब्द धरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजी कला जित कर धारिया। पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घरू अनहद वाजी अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख।

you. नाहौं जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरया विसर नाही दातार अपना नाम देहु गुण गावा दिन रात नानक चाउ एहु सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महला तीजा अमृत सदा वर्षदा बूझन बूझनहार गुरमुख जिनी बुझिया हर अमृत रखिया उर तार अमृत सदा वर्षधा बूझन बूझन हार गुरमुख जिनी बुझिया हार अमृत रखिया उर तार हार अमृत पी वह सदा रंग राते हौ मैं तृष्णा मार अमृत हर का नाम है

साहिब जीओ, मैं मूरख की केतक बात है, ओट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे।

नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे जेहवा एक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत नक नहीं लहिए रहाओ कोट पराग हमारे खंडो अनक विधि समझावो हमें अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ कीर्तन सुहला सुहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला एको अंकार सत गुर प्रसाद जयकर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सुहला सिवरियो सुजनहारो तुम गावो मेरे निरभउ का सुहला हमारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमल सुमार संबत सहा लिखिया मिल कर पाओ तेल देहो सजन असीसणिया जो होवै साहिब सिओ मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सुमरिये नानक से दे अवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे सनेक बाबा जयकर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे तसियां कटियां पैरां तिथी वारी माहो होवा सूरज एको रुतनेक नानक करते के केते वेस राग तनासी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मने आन लो पवन चोरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत पेरी रहाओ सह सब नैन नन नैन है तो एको सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसते चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंत लो बितमनो आनदिनो मोहे आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भो भरिया मेरे साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे राहो साकत हर साधना जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावै जमकाल सहस्र निर्दा हे अर्जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पो खंडा हे अब नासी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा हे जन नानक नाम दा टेक केर ना में ही सुख मंडा हे रा गौड़ी पूर्वी मेला पंजवा करो बिनंती सुलो मेरे मीता संत कहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आ गए वसन सुहेला औद गटै दिन सरै नारे मन गुरमिर का सुवारे राओ यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावे उरस हकत कता तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे
ਮੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਐ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤ।

सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक ही राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर रखै। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पात रखै, ताकि गात मित कोई न लखै। प्रभ के सेवक कौ को न पहुचै, प्रभ के सेवक ऊच के ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। निकी कीरी में कल रखै, भस्म करै लस्कर कोट लाखै। जिसका सांस न काटत आप, ताको रखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करत बिरथे जात। मारे न रखै अवर न कोय, सर्ब जियां का रखा सोए। काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात। करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रहे सुमाए। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जान दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व दुख का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। आवर स्यानप सगली शाड, किस जन की तू सेवा लाग। आवण जन होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाऊ। तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुरु की आज्ञा मन में सहै। आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै। मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मन, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्बिन धन जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मह पार ब्रह्म। एक है आप नहीं कश भरम, सह सियानप लया ना जाइए। नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत। परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे। पार ब्रह्म की दुर्गा गवे, सुनकर बचन करण अघने। मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर आख्या हो जाका मंत्र। अमृत दृष्ट पेखै होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस जिस भावै तिस ते, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। जे बा एक उसत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोलना पौचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निरपानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया के संग न लेप, मन में रखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद पाया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पाओ चूका निरपहो होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका

ਸਾਥਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਖਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਾਚੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਰ ਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਂਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਾਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੁ ਦੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦੈਤ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਆਵੈ ਠਾਏ ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਹਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ ਇਨ ਤੇ ਕਹਾਉ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਸ ਅਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਭ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾਮ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵਹੋ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ ਹੋਹੇ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਬਿਵਹਾਰ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ ਅਨਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਹਿ ਏਕ ਆਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਸਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੀ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪ ਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
उपजे चाउ साधक संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु के निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काठ मुकत जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी रब रहया साध संग हजूरी जिसका साथन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढै जन्म जन्म का टूटा गंड है गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया। साजन संत करो ए काम आन त्याग जप हो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो। भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम। बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जप हो गुण तास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटां करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जापाए सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राजभोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु पूजन का प्रसंगीत रसना जपति हर हर नीत भली सुकरनी सुबा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन सुमति आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सूग कहो किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस को गनी। जब एक हार अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए तब सेव साकत कहो हो कित ठाए। जब आप ही आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त कैस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै
तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेव कहा कोचीन। जब अपन आप उरतारै तो सगन आप सगन कहा बिचारै जह आपन ऊच आपन आप मेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस कौ आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बह बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाऊचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मै कीनो बिस्थार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दोहु पाक का आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार जात सुभावे ता श्रेष्ठ उपाय आपने पाणे लय सुमाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रखै तिस कोए न मारै सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस ताज अवर कहाँ को जाए ओ सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानहु साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमे रहे उप्याप प्रतपालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्रण तरन का इह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखु नेरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हलत पलत दुए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करो वापारी, दरगा निभाए खेप तुम्हारी। एक काटे कर को मन माहे, नानक बाहुर न आवै जाहे। किस ते दूर कहां को जाए, उबरै रखन हार ते आए। निरपाओ जपै सगल पाओ मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाय मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पौचन हार। सर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाति दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया सलोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिगरी एक सकट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक ते सजन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट ब्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पाणी बैसंतर माहे, चार खूंट दै दिसे समाए। तिस ते भिन नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै। सर्ब कलाकार खेलै खेल, मोल ना पाइय गुणै अमोल। जात सर्ब ज्योत मैं जाति ज्योत, धार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मानै, करण करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै तां करे बिसथार, तिस भावै तां एक ओंकार। अनक कला लखी न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मद अलिप तोर है, जो किश कहना सो आपे का है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां लए समाए। इस ते होए सो नाही बुरा, उरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच तहरी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सोजी पाए।
ਤਿਸਕਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ

अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित प्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितवाओ नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे।

समंतरसी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताती गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देहे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे पै भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाक् पातशाही दसवीं छपै छंत्व प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रा साहे साहान गनि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रया छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ताहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुवेकै नमस्तंग निकै नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमस्तंग सुवेकै नमस्तंग निकै नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग बजबे नमस्तस्तजबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकाप्ये नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तंग वरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारं नमस्तंग कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सतवंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंत्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अदेह है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निर्सीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अभा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाते नृसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तुं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी अनूपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धं अगंग ओघहर्ता परम

काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहसाय नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्यंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छन्त्व प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरका पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र जत्र विराज अवतूत रूप रिशाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग

एक मुहूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देपे बिना जाने जेपे दौर कते रूप रंग न जात पात सो जाने के जेव तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र मक चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह की बिखै जग जापी जे जाप वा देवनाथ मूर्त प्यो सब जे थाप परम रूप नित मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्वेश्वर चिव सुयम भवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व अंता सर्व तेन पे एक सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कूट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वो चित मत पार संतवा प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंगन भव प्रकाश निश्चिन सा जान बाहु सान साहु राजान राज पानन पान देवान देव मा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनभूतांगा बापंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्युत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्मादृश्य धर्म सर्वा परना डंडन भाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे कुजंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाली चतर चक्र काली चतर चक्र पासी चतर चक्र वासी चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चांदन सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय दिशय दृश्य गृश्य भगवती चंत्व प्रसाद कथते या चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्मय किया भंज भरमय किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवतूत वरणय के विभूत करणय के राजंग प्रभाय के धर्मंग तुझा है किया सुख वरणय के सर्वा अपरणय कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अधिव है कि आप अपिव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रहीम है रिहा कह पाक वे अब है कि गह भूल गह वह कि फूल गुना है कि साह न सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है

जाहु की सर्वत्र पाहु की सर्वत्र दिशा की सर्वत्र पेशय की सर्वत्र काल की सर्वत्र पाल की सर्वत्र हंता की सर्वत्र गंता की सर्वत्र पेखी की सर्वत्र पेखी की सर्वत्र काज्य की सर्वत्र राज्य की सर्वत्र सुख है की सर्वत्र भूख है की सर्वत्र त्राण है की सर्वत्र प्राण है की सर्वत्र दिशा की सर्वत्र पेशय कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलीम है कि परमंग रहीम है कि अकल आलम है कि साहिब कलाम है कि हुस्न वजू है तमामुल रुजू है हमी सुलसलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमा मैं रुजुअल निदान है हरिफुल अजीम मै रजाय की यकीन है निकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र पंगी त्रिकाम मित्र वर्गंग त्रिपाध्य गंजे गाते सुभंग सर्वभागी सुसर्वानुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरक प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव प्रभा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है भक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है संभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामेत्र भंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न चात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक अमितो अमीक सदैव प्रभा है अजय है अजय है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्न जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जवा है के साहिब की राह के नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के सुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है किमितो पसा है क्या तुम प्रभा है क्या चलंग नंग है किमितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर खंड पर नर मंड अनुपवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंछिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितुदार जल तल अमंड दिशिश अपंड जल तल महंत दिशिश बेअंत अनुपवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कैस दाहु ओंकार आद कथनीय नाद कल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंछिज गात आजिज नवात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडारण डट पारा डीठ धर्म अत टीठ कर मन ब्रन अनंत दाता महंत
हर भूल मना चंतव प्रसाद करुणालय है, अरकालय है, कलकंडन है, महमंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्वभारण है, त्रित के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है, ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, तप है तप है, कृता कृत है, मृतामृत है, अमृतामृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी कृत है, मितेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, मृतामृत है, अजबा कृत है, मृतामृत है, निर्नायक है, कलकायक है, विश्वम पर है, करुणालय है, निर्पनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस की जस है, भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग विपूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आसासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी चांदा जय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगांज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी नरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामी समस्तुल प्रनासे अगंजुल अनामी समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते सर्व

सदायंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवैये। श्रावक सुत समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुद सुदादिक संत समूह अनेक मती के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के। श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। माते में तंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे। भारी बुझान की भूप भली बिदनयाव तुशीस न जात विचारे। इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिर सब देश तिसान को बाजत ढोल मृगंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत गौन गन नहीं जात विचारे। श्रीपा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिदारे। तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के बिख। पौन आहार जति जतार सुबह सुविचार हजार के दिख। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसासुना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर हरिन मरोर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे। श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अवचार सार की तार पछैया। तोर तो देश मलिंद मुवासन माथे जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़ हार सो बात नहीं चक जार लवैया। साहिब श्री सबको शरणायक जाचक नेक सुवेक देवैया। दानव देव निंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे। सास मुह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक छपेंगे। मानव इंद्र जिंदर निराध बचौंतर लोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जमफास भरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पगते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बख्यान सु बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सबितायो। साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछाको शीस निवायो। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबीर बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना। जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो। आप हाथ दै मोहे बचाओ, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए। सब बैरन कुआ संघरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं। जो वर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सूत्र हमारे मारी है। आप हाथ है मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोय रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दुष्कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो। जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो। आदंते कै अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मुंह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक के पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करक करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते बदन सिर सब तार है, आप अपने बूझू चार है। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरालम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत। मां देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के पिछजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कै पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बाउल रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पे शंकर कैठा। शिगरी सिठ दिखाए चम भवा, जुगा स्वरूप स्वयं भव। रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख सुंगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे आस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मैं हरि हो। रित सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट चाच विसकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो का, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दुख इनको छय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावे सुई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़ेल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई। सुने मूड चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन्नर के रह हो, जो या की एक बार। चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह सहस पनी जय। सहस सुन तीन कही जय, भाद्र सुदी अष्टमी रवारा। तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया
पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा

ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर उतर तारी तुम ते हो ए सो आ गया

युवा आत्म राम सर्व मह पेख पूरन पूर रहया प्रवेक रतन अमोल हृदय मह जानू

तौ पाइए बिन जिहवा क्या जाने स्वाद रहाओ। अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत घास संग रचै जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बुझै। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावै नानक तिन जम नेड़ न आवै। राम कली महल्ला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर धन रास निरास इह बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावह हर जन अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बन्यो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग। गई गिलान साध कै संग मन तन रातो हर कै रंग। राखे रखन हार दया ना किछ सेवा ना किछ काल। कर कृपा प्रभ दीनी कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काढ लया। सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ। गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक लिव लाई। राम कली महल्ला पंजवा कौटी बदलै त्यागै रतन छोड़ जाए ताहू का जतन। सो संचय जो होची बात

अमृत कौरा विखिया मीठी, साकत की बिद नैन हो डिठी, कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुनत जन बिछू डसाना, माया कारण सद ही झूरै, मन मुख कबहै न उस्तत करै, निर्भउ निरंकार दातार, तिस स्यों प्रीत न करै गवार, सब साहा सिर साचा साहु, वे मोहताज पूरा पातशाहु, मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरहा, नानक तरियै तेरी मेहर, राम कली महला पंजवां, रैन दिन सुजपों हर नाओ, आगे दरगह पावो थाओ, सदा आनंद न हो भी सोग, कब हूं न व्यापै हो मैं रोग, खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी, रहाओ गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै न तार, सगल उपाव न चालै संग, भवजल तरियै प्रभ कै रंग, देही धोए न उतरै मैल, होमै व्यापै दुबिधा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

नानक की प्रभ श्रद्धा पूर। राम कली महल्ला पंजवां। तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोए। तू समरथ पूरन पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म।

ठाऊ रहाओ। जप जप जीवा तेरा नाओ, आगह दरगह पावू ठाओ। दुख अंधेरा मन ते जाय, दुर्मत बिनसै राचै हर नाय। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत। पाओ भागा निरपाओ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै। कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोह है हर द्वार। राम कली महला।

गाओ, कीर्तन निर्मोल कहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तह हरख न सोग न जन्म न मरत, हर कृपा जिसे आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास, राम कली महला पंजवां।

पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जानै सुन सुन अवर वखानै रहाउ संकरा नहीं जानै भेव खोजत हारे दे।

सुन सुन जीवो मन इहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगणत जी का दाता, जिस है जनाव है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगल अरत है प्रभ गुणतास।

देवा, कीमत किछ कह न जाई, साचे अलख साचे सच अलख भेवा रहा, करन करावन आप तिस कौ सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनीत सच सहज सुख पावह मीत, साहिब मेरा अत भारा किन मैं थाप उथापन हारा, तिस बिन अवर न कोई जन का राखा सोई, कर कृपा।

साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समानी रहाओ। तृष्णा भूख सब नासी संत प्रसाद जपया अविनाशी।

जुर्मत मल जाए। जिस भेटत मिटे अभिमान, पार ब्रह्म सब नजरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान। रहाओ गुर की कीरत जपिए हर नाऊ, गुर की भगत सदा गुण गाऊ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान।

विंदर विय दिन राती साध संग कर मन की प्रीत राव। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद तृप्त न आवे बिखिया साध। परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई तुत्तर माया। काम न आवे सुकार कमावे आप बीज आपे ही खावे। राखण को दूसर नहीं कोए कौ निस्तरै जो कृपा होए। पतित पुनीत प्रभ तेरो नामु।

तना रहाउ। ऊने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करै विकार जी अरे कहताई, गाफल संग न तसुआ जाई।

तन कह आठ पहर मनता कहो जा पुराओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबण सूध।

विदेही दिसै, सगले साज करत जगदीशै, ठगनहार अन ठगदा ठागै, बिन वखर फिर उठ लागै, संत सभा मिल करो बखियानु, सिमरत शास्त्र वेद पुराणु, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक ताकी परम गत होए, राम कली महल्ला पंजवा, ज्योति

सगले तन के जाके मस्तक रखे हाथ प्रभ मेरु अनाथ को नाथ पतत उदारण कृपा निदान सदा सदा जाइए कुर्बान निर्म

साध कै संग पाप बिनासी नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहिया गुणतास दर्द दे दर्श देहे धारो प्रव्यास नित नानक चितवै सच अरदास गुर परमेश्वर।

और मेरे बुजुर्ग प्रोफेसर रणजीत सिंह जी और नीलम साहब बैठे ने सारे गुणी जानो तुसी कीर्तनिया दे उते सतगुर ने सानू गुरबाणी गायन दा आदेश कीता उपदेश कीता बाणी गुरु गुरु है बाणी असी बाणी नू प्रधान रख के जो भी गल करनी है उस पर थाए ही

0: ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा हो गया,
0: और ज्यादा है,
1: और ज्यादा हो गया ना।
0: ऊपर लेवल थर्ड लेवल अलग सेम कर दो,